अमृत, अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा न पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत की कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नूं पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेने से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचो चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी सप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने सप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ओ समुंदर दे विच इस तरह घुमण लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घुमदी देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है ओ समुंदर दे विच घुम रहा है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुटदे ने तां नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते जहर तो बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दी, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है, देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी वो कहन लगे मेरा वीर डुब्या नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले ए शब्द उचारिया।

एक गुफा च बह जा, करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

सुत कंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं

सिंहासन थे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला तो सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी एक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ये काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ये दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, उहदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू उहदा हुक्म होया है। ते सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासा करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरणा ते रख दिता ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आए, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे हां, सानू पता है सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। सात संगत, गुरु किसे चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिहदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों ओह काबल गया सी। दूसरा कंगन जिहदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओह कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता, क्योंकि चेतो ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबां ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते,

ऐ देख मेरे हाथ ते खाली न, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नू दित्ते सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह ये झूठ बोलदा है, ये कंगाल कंगन कितों दे सकदा है।

पंडितां दी प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते सहबा ने कहा जिहड़ा मास वाला लंगर छकेगा उहनूं बहुत ही माया मिलेगी, जिहड़ा सादा लंगर छकेगा उहनूं घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ये सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्होंने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्होंने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

साधु सन्यासी सारियां दी प्रीख्या ले सारियां पासियां तो नाराज होके हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साध संगत ते अपनी निगाह टिकाई।

छुट्टी वाले दिन बड़ा पारी इकट्ठ किया। हिंदुस्तान का बादशाह उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब के जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 के करीब लोगों का इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी, कीर्तन हो रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चेहरे का रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विच

सकत केहि। अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहि जय, कोट इंद्र इंद्राण साहो सहान गणि जय। त्रिपौन मही सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत, तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बरनत। सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्ते।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना कर दी हुई उसके मगर लग पई हाँ। हुण मैनू वो दाता मिल पिया, मैनू किसी की परवाह नहीं। भगत जी कहते ने

अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है। शब्द का मुख भाव रहाओ दी पंक्ति ते हुंदा है।

उसनु कोई सुनावे कोई कहे। अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनदे हैं, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं, अंतर जोत राम प्रगासा। जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है, गुरमुख विरले जानी, कोई विरला गुरमुख इस कहानी नू जान

ता तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर दिंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती, हर इंसान भज रहा है, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता है। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदा है। ते गुरु कहंदे तुसी मैनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। तो जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है। इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तां वी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावां, अपनी सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना, दूसरे नूं दुख देना, ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहेगुरु है, जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोची

पानी टिकिया रहेगा, जे पानी नो धरती ते डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह साहब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है।

बगैर परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

मंजिल तक नहीं पहुंचते। गुरु की लोड़ इस वास्ते है कि सच्चा उपदेश साढ़े हिरदे विच वसे, पर गुरु की प्राप्ति निम्रता प्यार और सेवा नाल हुंदी है। होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, दोनों भगत ने, भगती दोनों भरा करते ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया। भगती ते करदे ने पर हाले गुरु की प्राप्ति नहीं। दोनों जने धनी सेठ दे घर पहुंचे। उस धनी पुरश ने दोनों भगतां की सेवा की, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं। दोनों भरावां नूं दक्षिणा दीती, माया भेट की। होता वड्डा सी, वड्डे नूं वड्डा समझ के चोखी माया। ब्रह्मा छोटा सी, छोटा समझ के थोड़ी माया दिती, पर ब्रह्मा चलाक सी। उन्हें दोनों पेटावां कठियां कर लिया। घर आके अद्धी अद्धी

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू ले, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपा कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट होंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पए। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनियां तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तैनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्त हाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया, होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंघदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनियां तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए दा योर चलिया, ते हाथी नूं खिच के ओ पानी दे

ता विष्णु भगवान ने इन्हां दे बंधन कटे, तंदुए नूं भी मुक्त कीता, इस हाथी नूं भी मुक्त कीता, ते दोनों भरा भोता ते ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भगती करते सन, पर माया का लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते इन्हां नूं इतना दुख भोगना पिया। और जद भगवान मिलिया ते फिर मुक्ति नूं प्राप्त होया। इसे शब्द दे विच धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हां दोनों भरावां दा जिक्र करदे ने कि माया पिछे सराप दे के दोनों ने जोड़ना पाईया, दुख हो गया पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हां दा पार उतारा कीता। इसे शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ए कथा कहानियां तेनूं दस रही है, इन्हां तूं सिखिया लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहिब जी फरमांदे ने, पापां बाजो होवे नहीं मोया साथ ना जाई। पापां तो बगैर माया बहुती कट्टी नहीं होंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जांदा। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाण, मन विच प्यार रख, जिन्नी भज नठ माया वास्ते करदा है, अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, ओदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा, ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनू परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक बारी तू भी कह उठेगा, ऐ भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी, मैं भी परमेश्वर दी कहानी नूं जान लिया कि ए संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है, परमेश्वर दा अमृत दा बगीचा है।

शब्द गुरपीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग भौराना।

माही चरण गुर मीठे, माही चरण गुर मीठे, वड़े भाग देवे परमेश्वर, वड़े भाग देवे परमेश्वर, कौन फला

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहे गुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रहे जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नू फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

वेद व्यास जिन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नू प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उन्हानू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है, ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन, ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है, ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी, ते पंडित जी ने कहा बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है, ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा, जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खाण दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया बाबा जी आप दे गुरु कौन हन, गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता, आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाओ बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे, रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नू राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुन

कहन लगे, गुरु महाराज मैं आज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते आज दास बन के आया। आज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लव। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देखदे देखदे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोंदे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगतां नूं छकांदे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौं जांदे, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ये गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन, ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया, डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकता है, जुलाही ने भी किया कौन हो सकता है, ते जुलाही ने फिर कह दिता, होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहन दी देर सी, इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन, जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है, इतनी सेवा करन वाला, कड़ी सेवा करन वाला जिसनू ने थावा किया है, उसनू ते निथाव्यां दे थाम होना चाहिदा है। बस भगती परवान होई, सेवा परवान होई, ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया, ते इशनान करके बिठाया तखत ते, ते वर देने शुरू कर दिते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणियां दे मान हो, निताणियां दे तान हो, न्योटियां दी ओट, निगत्तियां दी गत, पत्तियां दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया, ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता, इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु

कैसियां पवित्र सेवावां गुरु नानक सच्चे पातशाह दियां हन। ते नजर आया कहिंदे ने पिता कल्याण दास जी ने 20 रुपये दिते सन कि बच्चे कोई खरा सौदा करके आओ, सच्चा सौदा करके आओ। 20 रुपये लेके चल पे, जाना ते सी चूड़ काने, मगर रस्ते दे विच ही एक साधु ते संतां दी मंडली नजर आ गई। ऐसी मंडली जेड़े कई चिरां तों अनेकां दिनां तों परमेश्वर दी आस विच बैठे सन, भुखे प्यासे के परमात्मा दर्शन देवेगा। ते जे परमात्मा साडे लई कोई भोजन दा उपराला करेगा ते तां ही छकांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी निगाह पै गई। बालपन विच ही बाबा नानक संतां दी मंडली विच जा बैठे, सिमरन ते बैठ गए, भजन सिमरन की

करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उन्हां नू तृप्त कीता।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। साथ संगत बोलो श्री और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लेते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठ दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती माया दे ढेर ला।

तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगता जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नजर की, सोने दे ढेर ला देते, सोने दी मोरा ढेर लग गया। जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करा नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते। आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे ता कुछ नहीं जे मिलन। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी, ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने करां नू चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या ता एक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पूछा, लैणिया तू नहीं गया वापस? माया दे ढेर लाए, सोने चांदिया दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नू मुड़ गए, तू नहीं गया? भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहन लगे गरीब निवाज, आ सारे जो चोलियां भर के घरां नू चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा ता एक तू ही है, मेरा ता तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा लै आए लैणे नू, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज, आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा ता एक तू ही है। साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया, ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई ता पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के, गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों? गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी। ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी, तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात सिगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नु कोल सदया, अपने हृदय नाल ला के भाई लैणे को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती, उसकी ता मनोकामना पूरियां होईयां। और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती, ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं।

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वही।

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर आ गए। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है। बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ओछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को है,

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा की अत हुई धरती ने पुकार की थी। ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच धन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ये कीता। चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ये उपदेश कीता। ये जातां पातां इंसान दियां बनाईयां हैं। सानू सारियां नू बनाण वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी धन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करिए।

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इस लई कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसी ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े माण नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस माण विच आके तान विच आके असी कौन हाँ? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी का, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार का मालिक है साडा। तो असा ये तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु का परिवार हाँ, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस माण विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसकी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चितार अवगुण कौन चितार गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता जानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल